जुगो जुगा टल हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब सतगुरु दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के मेरे तो पहला गुरु घर के रागी सिंघां पासों सतगुरु की अमृतमई बाणी दे कीर्तन श्रवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत समा है लड़ीवार चल रहे भगत कबीर साहब जी दे पावन बचना दी विचार दा। विचारां नूं रमण तो पहला जिन्हें शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राहीं श्रवण कर रहे हो फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन कबीर साहब दे श्लोकां विचों 173 अते 174 नंबर श्लोक है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 1373 दे उत्ते सुभायमान है। कबीर साहब ने इन्हां श्लोकां विच मनुखी जीवन नूं राह दस्या है। वो जीवन जिउण दी जुगत ते तरीका दस्या है जिहदे नाल बंदा आत्मक तौर ते अंदरों शांत ते टिकाव विच हो सकदा है। वैसे जिहड़ा ये एक शब्द है ना भी आत्मक शांति, ये शब्द आपां आम तौर उते जदों कोई मर जांदा है जहान नूं छड़ जांदा है संसार तों चलिया जांदा है ते उदों आपां एक बोल अक्सर ही सुनिया होवेगा कि जदों परिवार गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच आउंदा है श्री सहज पाठ जां अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुंदे ने ते कहा जांदा है जीव दी आत्मक शांति दे लई श्री अखंड पाठ साहिब जां सहज पाठ जिहड़ा है ओह आरंभ कीता गया है। हुण आत्मक दा अर्थ हुंदा है अंदर। वैसे जे इहनूं आपां डुंघाई दे नाल समझीए इह जिहड़ी आत्मक शांति है इहदी लोड़ ते बंदे नूं जिउंदिआं जी बहुत हुंदी है। अंदर बंदे दा भड़कदा है मन जिहड़ा है वो बंदे नूं भड़काउंदा भी है। अंदर बंदे दा सहमिया होया है जदों बंदा जान तों संसार तों तुर जांदा है उत्थे फिर ये टर्म आम आपां वरदे हां भी एक आत्मा है जिहड़ी बंदे दे अंदरों उड गई है उहने हुण किते भड़कना है ते उस आत्मा दे टिका लई बाणी दी लोड़ है। पर सात संगत चेते रखियो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने यह गल दर्ज की है। महाराज कहते ने इहदे बारे कोई दावा नहीं किया जा सकता भी बंदा मौत तो बाद चलिया कित्थे जांदा है। तो भड़कते बंदा जिउंदिआं जी रहा है टिका जिहड़ा है बंदे नूं जिउंदिआं जी टिका की लोड़ है। हुण टिका ना होने की वजह की है इसनों फाइंड आउट करने की लोड़ है कि बंदा टिकता क्यों।

महाराज तुसी अपना धर्म त्याग के इस्लाम दे विच आ जाओ, तुसी अपना सिख धर्म छड्ड देवो ते इस्लाम दे विच आ जाओ, तुहानू छड्ड दिता जाएगा। कल्ला छड्ड ही नहीं दिता जाएगा, तुहानू इस्लाम दे सब तो वड्डे पीर बना दिता जाएगा। तुहाडा रुतबा सारी दुनिया दे उत्ते वखरा होगा। राजे महाराज तुहाडे चरणा दे विच झुकणगे। गुरु प्यारिओ, जान बचाउण वास्ते ऑप्शन आ गई है ना। एक ते कुरान दीआं आयतां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज कर लो ते तुहानू छड्ड दिता जाएगा, ते दूसरा इस्लाम नू कबूल कर लवो ते तुहाडी जान बख्श दित्ती जाएगी, तुसी मुसलमान बन जाओ। भाव जान बचाउण दे तरीके सन, पर गुरु महाराज जी ने दोने ठकराते। गुरु महाराज जी ने अपनी जान दी परवाह ना कीती, अपने असूलां दे उत्ते कायम रह के अपनी शहादत दे दित्ती आ। ऐसे ही करके सतगुरां नू शहीदां दे सरताज आख्या जांदा है, कि वह किसी लालच दे विच नहीं आए, उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागिया, वह डरे नहीं। शायद जे आपां पहले होर दुनिया के शहीदां दी आपां गल करिए ते हो सकता है कि वह अपना धर्म त्याग देंदे जां कोई इदां दी ऑप्शन उन्हां दे सामने आउंदी, वह सरकार दीआं शर्तां मन लैंदे। पर सतगुरां ने कोई सरकार की शर्त नहीं मनी ते तत्तियां तवियां दे उत्ते सड़ना प्रवान कर लिया। ऐसे उस दुनिया के रहबर अजोके एक वक्री तरह के शहीद तुहानूं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत तुहाडे नाल सांझी करदे। हुण गुरु प्यारिओ, जे आपां आखीए कि गुरु अर्जन देव जी शहीद होए इस करके शायद दुनिया के उत्ते बहुत वड्डा उन्हां दा रुतबा, उन्हां नूं शहीद होए आ तां असीं उन्हां नूं याद करदे नहीं, प्यारिओ इस गल नूं पासे रख दिंदे आ। जे गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद ना भी हुंदे, जे उह शहादत ना भी दिंदे, किसी कारण उन्हां दी शहादत ना हुंदी, जो तकरार सरकार ना होया वह ना भी हुंदे, ते गुरु प्यारिओ सच्चे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी का रुतबा तां भी महान सी। किवें मनुखता की झोली दे विच जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन स्वरूप यह पावन बीड़ साडे दुनिया नूं मनुखता नूं देती है ना, यह बहुत वड्डा कारनामा सी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का। किते सोच के देखो कि जिवें गुरु महाराज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ये एडा वड्डा कारनामा ना करते, इस सारी गुरबाणी नू एक जगह इकट्ठिया करके तरतीब दे के भगतां दी बाणी होर महापुरशां दी बाणी नू एक जगह इकट्ठिया ना करते ते सिख अज कित्थे कित्थे टक्करा मारदे फिरदे, कित्थे सोच के देखिए। वह शहीद ना भी हुंदे तां भी उन्हां दा रुतबा महान सी, इह क्योंकि एडा वड्डा उन्होंने कारनामा कर दिता। भादों सुदी एक 1661 बिक्रम नूं रामसर दे पवित्र अस्थान ते, हुण गुरु प्यारिओ ये पावन स्वरूप नूं तैयार, ये किते 2-4-5-7 दिन का काम नहीं सी, बहुत ज्यादा वक्त लगा। कागज इकट्ठे करने, स्याहियां बनाउणियां और तरतीब देनी सारे महापुरशां दी पवित्र बाणी नूं एक जगह, भावें गुरु प्यारिओ धन गुरु नानक देव जी महाराज जी तो लैके बाकी सारे गुरु साहिबाना तक यह गुरबाणी पहुंची सी। गुरु महाराज जी दे कोल एक गुरबाणी सी, पर उस वेले कुछ क लोग, कुछ क फिरका प्रस्त लोग, सिखी नाल ईरखा करन वाले, ओ अपनियां बाणी रच के जिद्दां दी गुरबाणी गुरु बाबे नानक दी मगर दे विच ना आउंदा ना नानक दा, इदां दे ओ अपने ख्याल रच के ते सिखां दे विच ओ मिलाउण दा यतन करदे सन। ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का भतीजा मेहरवान इस काम दे विच सब तो तेज सी, बड़ा तेज सी इस काम दे विच, और मगर नानक दी मोहर ला के ते दुनिया दे विच ए प्रचार दिया सी वे गुरु नानक दी बाणी आ। कच्ची बाणी नू एक पासे कढ के ते गुरु प्यारिओ सच्ची बाणी जिहड़ी धुर की बाणी सी ना, उहनू सच्चे सतगुरां ने एक जगह ते एकत्र करके एक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना कीती ते इहदा हरिमंदर दे विच प्रकाश कीता। ऐसी सच्चे सतगुरां दी महानता बाबा बुढ़ा जी वर्गे महापुरश, भाई गुरदास जी वर्गे महापुरश इस कार्ज दे विच उन्हां दा साथ दिंदे रहे। ते साध संगत जी, पहला प्रकाश हरिमंदर दे विच जिद्दन हो गया सी ना, उस दिन गुरदेव पातशाह पहला उत्थे तख्त डाह के बैठिया करदे सी, उस जगह दे उत्ते तख्त डाह के बैठिया करदे सन, पर जिस दिन मंजी साहब दे उत्ते प्रकाश हो गया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिदा संगत तुसी बैठे हो ऐदा ऐदा शब्द गुरु दे सामने ऐदा बैठ गया जी। ते दूसरी होर महानता

जा सगल समगरी तुमरे सुतर तारी तुमते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दासु बोलना जी सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही।

प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीना। पेखियो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हर खे पतीना। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीना। पेखियो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हर खे पतीना। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक,

अनक बंच बल छल करो माया एको पाव थैली संचो सरम करो थाक परो गवार मन कह कामना वही अंत्यो सरबार थित पावो गोविंद भजो संत की सिख लियो

अगणत बरे भंडार, दैन हर सर जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नाही काहू को मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारा जाके आपे, नानक तेते गुरमुख धरापे सलोक, धर जियरे एक टेक तू, लाहे बेडानी आस, नानक नाम त्याईए कारज आवे रास पौड़ी, तद्दा तावत तो मिटे संसंग होए बास, तोरते कृपा करो आप तो होए मने प्रगास, तन साचा ते उसा साह, हर हर पूंजी नाम साह, तीर जस सुबात है बनिया, हर हर नाम सरवन जय सुनिया, गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई सलोक, नानक नाम नाम जप जपिया, अंतर बाहर रंग गुरपुरे उपदेसिया, नरक नाई सात संग बोड़ी, नन्ना नरक बरै ते नाई, जा कै मन तन्ना वसाई, नाम निधान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कार ना होता ताको, नाम अंतर गुर दीनो जाको, निध निधान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद दूरे सलोक, पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बिकार, नानक सो अराधी है अंत ना पारा वार पौड़ी, पप्पा परमत पार ना पाया, पत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, परपंच त्रो मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पातशाह शत्र सिर सो, नानक दूसरा वर्ण को सलोक, फाहे काटे मिटै गमन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिर न मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कलयुग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जब तो कटिए फासा, फिर आवन जान न होई, एक जपो जब सोई, करो कृपा प्रभ करने हारे, मेल

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहुं कुंड जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन क्यों सकल कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप जाया, नानक गुरमुख हर सिमर।

प्रभु सास अष्टपदी जय मात पिता सुदमीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महावयान दूत जम दल तय केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अतपारी हर को नाम किन माय उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल।

तरह अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आखावै जे मार गए जात अकेला तै हर नाम संग हो सोहेला ऐसा नामन सदा ध्याई है नानक गुरमंग परम गत पाई है।

नौ खंड पृथ्वी फिर जल जीव महान दास तभी सर थीव अगन माहे होमद प्राण कन कसब हावर भूमदान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संयम साधन निमख निम कर शरीर कटावे तौ पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाय नान गुरमुख नाम जबत गत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमाना मन ते हुटै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बो साधना करे मन ते कबू न बिखिया टरै जल तो वह बो दिया नीत सुध कहां होई का जी भीत मन हर के नाम के महिमा ऊच नानक नाम उदरी पदत बो मूच बो सियाणब जम का भो व्यापै अनक जतन कर तृष्णा त्रापै पेख अनेक अगन नहीं बूझै कोट बावदर गै नहीं सीजै छूट सनाही उपयाल मोहि व्यापै माया जाल अवर कर दू सकली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोर है साध संगे हो मैशूर है जे को जन्म मरण ते डर है साध जना के सरनी पर है जिस जन को प्रभ दर्श व्यासा नानक दाके बलबल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रदान।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद गणी खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत सन्ने करे प्यार। धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोह द्वार। जति सदा वह जुगत न जान है छड बह है घर बार। सबको पूरा आपे होवे घाट न कोई आखै। पत परवाना पिछे पाइए ता नानक।

जात में जो जोत में जाता कल कला भरपूर है। तू सच्चा साहेब शिव सवाल जिन की थी सो पार पे।

0: जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझता है, सात जुग रसंतो का धर्म ग्रथ वा, द्वापर अब तपे का त्रेते रथ जते का जोर ग्रथ वा हो, द्वापर तपे का सत ग्रथ वा हो, काल जुग रथ गन का कूड़ ग्रथ वा। महला पहला।
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे।

वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारी वेद हुए सचार पढ़े गुणहे तिन चार विचार।

ज्यों दुरू श्रृणामणी आवे वारोवार जूठे जूठा मुख से नित नित हुए ख्वार।

0: ज्ञान उतारे तो ये महला
1: मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पार त्रया पार धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाए।

राखू राखन हार दयाला, नानक करके गोले। जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जफूर शब्द गुरु, बाणी के बोहे थमर्त के दाते दसा पातशाहियां दी जोत, सहब सचे पातशाह सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों, सतगुरां दी बड़ी अपार बख्शिश रहमत हुई है आप सब महाराज दी पावन हजूरी विच बैठ के मेरे तो पहला गुरु करके रागी जथे पासों तुरकी बाणी के कीर्तन श्रवण कर रहे सी। उपरंत सत्कार योग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास करके अज दा जो पावन उपदेश है मुखवाक है वह आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो आओ साध संगत समा है मुखवाक दी विचार दा, विचारां नूं अरंभण तो पहला फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 634 अते 35 दे उत्ते राग सोरठ विच सिख धर्म दे बानी धन गुरु नानक साहिब महाराज दी रसना तो उचारण कीता होया दर्ज है। गुरु गरीब नवाज महाराज दा ए पावन बोल जिस दा सरलेख है सोरठ महला पहला। राग सोरठ विच पहले पातशाह, महला पहला दा अर्थ है शरीर पहला। गुरु नानक साहब ते तुकी दा अर्थ हुंदा ए पी ए दियां तीन तुकां ने, एक पदे दियां तीन तुकां ने, तीन लाइनस ने, सो उहनूं ते तुकी कहिंदे ने। तुक दा मतलब हुंदा है लाइन। धन गुरु नानक साहिब महाराज ने इस पावन बचन दी रहाउ वाली पंक्ति विच बख्शिश करदिआं वाक रखे ने सुण पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजै भाई स्वात्म तत् विचारी। महाराज एक पंडित नूं मुखातब हो के संबोधन हो के यह बोल रखते ने भी हे कर्मकांडी पंडित, कर्म वो कर जिहदे नाल अंदर सुख पैदा होवे, जिहदे नाल तू आत्मा का जिहड़ा तत् है जिहड़ा मूल है अकाल पुरख वाहिगुरु उहदे नाल जुड़ सके। पंडित बहुत सारे कर्म करदा सी, तीर्थां उत्ते नहाउणा, वर्त रखणे, सो इहो जे कई कर्मकांड जिहड़ा सी उह पंडित लोकां कोलों करवाउंदा वी सी करदा वी सी उपा दसदा सी। तो महाराज कहन लगे इन्हां विचों एक भी कर्म बंदे दे काम आउण वाला नहीं है। खास करके बाणी ने ते इन्हां चीज़ां दा बड़े जोर शोर नाल खंडन कीता है। असीं जदों जपजी साहब दा पाठ पढ़दे हाँ तो पहली पौड़ी विच ही महाराज ने जिहड़े प्रथम कर्म सी उन्हां दा खंडन कर दिता। सोचै सोच ना हो वई, जे सोची लख वार। जे बंदा ये समझे भी मैं शरीर नूं सुचा रख लवांगा, शरीर कदी भी सुचा नहीं रह सकता, शरीर की सुचमता हो ही नहीं सकती। भावें बंदा लखां वार किसी तीर्थ उत्ते जा के नहावे इशनान कर लवे, शरीर कदी भी सुचा नहीं रहिंदा। तो महाराज ने पहली पौड़ी विच ही

सहज की कथ कथा है निरारी। तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। रहाओ अर्द उर्द दों तह नाहीं, रात दिनस तह नाहीं। जल नहीं पवन पावक फुन नाहीं, सतगुर तहां समाही। अगाम्य अगोचर रहे निरंतर,

भांति, नहीं तो राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सिर थीवे। अग्निमय हूमत पुराण, कनक असभय वर भूम दान, न्योली कर्म करे भो आसन, जैन मार्ग संयम यद साधन। निमक निमकर शीर कटावै, तो भी होमे महल न जावै, हर के नाम संसार किश नाहे। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना धीरह दे छुटै, गर्भ गुमान न मन थे हुटै, सोच करे दिन हर रात, मन की मैल न तन थे जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न बिखिया डरे, जल तो वे बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की मैं महाऊच, नानक नाम उदरे पथ बहुमूच, बहु क्षण जम का पो व्यापै, अनक जतन कर तिस न थापे, भेख अनेक अगर नहीं बूझै, कोट अभाव दरगाह नहीं सिजै, शूर से नाही उपयाल, मोह व्यापे माया जाल। अवर कर तू सगली जम डान, गोविंद भजन फिर तिल नहीं मान, हर का नाम जब तो दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै, सत्संग ये हुमे शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल भर जासा, सगल पुरख मह पुरख प्रधान, सत्संग जा कामड़े अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सोहु गनिए सब ते ऊँचा, जाका मन होय सगल की रीना, हर हर नाम दिन कट कट चीना, मन अपने ते पुरा मिटाना, पेके सगल से साजना, सुख दुख जन समदस्तेता, नानक पाप पुन नहीं लिपा, निर्धन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाम तेरा थाओ, निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल कटा को दे भोदान, करण करा मनोहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आपे, आपन संग आप प्रभराते, तुमरी उस तुम दे होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में से धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मद मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी, सगल थान त्यो उत्तम थान, नानक जे कट बसे हर नाम। श्लोक निर्गुण यार एन आ, सो प्रभु सदा संभाल, जिनकी याद चीज रख, नानक निभे नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दिस्तानी, जिन तू सास वार सिगारया, गर्भ अग्न में जिने उभारया, बार बस सतुज प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, विरद पया ऊपर साग सहन, मुख प्याओ बैठ को दैन, ये निर्गुण कर कुछ न बूझै, बख्श लयो तो नानक सीजे, जे प्रसाद तार ऊपर सुख बसै, सुत प्रहाद मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पी वे शीतल जला, सुखदाई पन पाव के अमोला, जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दुख मुड़ अंत वे आपै, नानक काल लेव प्रभु आपै, आदंत जो रखनहार, तेसो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नव निध पावै, तासो मूढ़ा मन नहीं लावै, जो ठाकर ससरा हजूरे, ताको अंधा जान तदूरे, जाकी टहल पावै दरगा मान, तिसे बजारे मुग्ध अजान, सदा सदा एव भूलनहार, नानक राखनहार अपार, रतन त्याग कौटी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो शरणा सो अस्थिर कर मानै, जो होन सो दूर परानै, छोड़ जाय तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन लेपो तारे तोए, कर दो प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पसत बिकराल, नानक काल लेव प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोग पुचारा करे दिन रात, बाहर फेक अंतर मल माया, शब्द नाहे कछ करे छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ समान, अंतर अगन बार धन स्वा, कल पाथर कैसे तरे यथा, जाके अंतर बसे प्रभाव, नानक दे जन सह समाल, सुने अंधा कैसे मार्ग पावै, घर गए देहो और निभावे, कहाँ बजार तुझे डोरा, निष्कहिए तो समझे पोरा, कहाँ भीषण पद गावे गुंग, यत्न करे तो भी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो उवा उस गवन, करतार करना मैं दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाय।

0: स्वाभ न चीज जो बराहिता स्यो प्रीत बलवा के ग्रेपी तरबस है अंधकेल माय हरंग रस है निर्कर्माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़ चीत बैर क्रोध काम क्रोध वो झूठ विकार महालोभ त्रो याहू जुगत बहाने कही जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकर तो पहर दहाल जो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुम रहंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूतर तारी तुम दे हो हे स्वाग्याकारी तुमरी गद में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभु छोड़ कह लागे हन सुहाए नानक कहू न सी जई मिन नावै पत जाय सवरी दस वस्तु लै पाशे पावै एक बस कारण बखोड़ गवावै एक बीना दे दस पी हिरले तो मूढ़ा कौका करे जिष्टा कर स्यो ना ही चारा ताको कीजे साध नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जे जने अपना हुक्म मनाया सर्व दोख नानक तिन पाया अगंत सा अपनी दे रात खात पीत वरते अन उलाद अपनी मान कश बहोर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत अब ही खोवे और उसका विश्वास ना होवे जिसकी वस्तु आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसे चौकन करे निहाल नानक साहेब सरा दयाल अनक पाद माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख छाया सो रंग लावे वो बिन से वो मन पुछतावे ज्योति से सो चालन हार लपट रहे होता है अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानकाव लय लाई मिथ्या धन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज शोभन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रस अस्थिय वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेग हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या वापस ऊपर कर दुगमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सुन पर निंदा सुने मिथ्या हस्प धर्म को हिरे मिथ्या नेत्र पेघ पात्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर पुकार को दावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बास लेत पुकारा बिन भूजे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरति साख की आर जा साच बिना कहो तो सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरदा बे आए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिर थे सब काम जो किरपन के निरार दाम धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाव नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन ने प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप ना करै आवत जावत जन्म है मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख धरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पुराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव शान सगल तेरा सब कह जाने आत्म की रै जिस भावे सिलै लड़ लाए तान तन अंतर या समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जब नानक हरी श्लोक आम क्रोध यार लोभ मो बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टवदी जे प्रसाद शक्ति अमृत गाए सिर ठाकर को रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमर परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिसे रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्याग निजोग जे प्रसाद पाठ पुटम रंडावे तिसे त्याग अवर कत लुभावे जिसे त्याग कत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से हि सोई जय मन आठ पैर ताक हजा सुख भी जाय जे प्रसाद तुझ को माने जे प्रसाद तू सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जबत दरगह मान पावै, नानक पासे ती कर जावै। जे प्रसाद रो कंचन देही, लिव लाभ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद राउ लारै, मन सुख पावे हर हर जस गाय। जे प्रसाद रे सगल छिद्र ठाकै, मन सरणी प्रभु ठाकुर प्रभु ताकै। जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चै। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करै। जे प्रसाद भूखन पैरी जै, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जै। जे प्रसाद अस्वस्थ सवारी, मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राह प्रभु प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैसा तिसे ते आई। तिसे ते आए जो एक लख है, यहाँ वहाँ नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तो आचार बिहारी, सिर्फ का कोसा साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पात रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने करनाद, जे प्रसाद बेखे बिस्मार। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहित जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद सुपूरन फलै। जे प्रसाद परम गत पावै, जे प्रसाद सुख सहित समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर गत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूर्त तक हो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साज, रे मन मेरे तू ता शिवराज। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपे जब सोए। आप जपाए जपे सो नाओ, आप गोहे सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगाद, प्रभु दया ते कमल विगाद। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व दान प्रभु तेरी माया, आपू कछु न किन्हू लया। जे तित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनका कछु नाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिठे अवमान, साध के संग प्रगट सो ज्ञान। साध के संग पुजे प्रभु नेरा, साध संग सब होत नवेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा ब्रह्म समानी। साध के संग गोचर मिलै, साध के संग सदा पर फुलै। साध के संग आवे पस पंचा, साध संग अमृत रस पूंछा। साध संग हो सब की रेहन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावै, साध संग अस्तित मन पावै। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीर, साधु के संग महापनीर। साध संग के सोने बैर, साध के संग न भिंगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं अवताप, साध के संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कबू तावै, साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग झार सहे। साध के संग बसे धन उचै, साधु के संग महल पहुँचै। साध के संग लड़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पै नाम निदान, नानक साधु कह कुरबान। साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीर को टम निस्तार है। साधु के संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो भासुर देवा। साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गाम, नानक साध के संग सबल जनामा। साध के संग नहीं कुछ काल, दर्शन भेड़ तो होत नयाल। साध के संग कलुग धरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिस बसै, नानक उधरे साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कर कर डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गल पई हमारी, साध के संग मिठे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध के महिमा भेद न जाना, जेता सुन ते तब गयाना, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊजते ऊंची, साध की शोभा मूजते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर्य सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के जैसे समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर एक, जम सुधा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एक बनाओ, नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगाल, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहे अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन थे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी की ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का गुण जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसे आना जाए अदाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी। श्लोक और तारे जो अंतर नाम सर मैं पेखे भगवान, निमक निम ठाकर नमस्कार है, नानक ओ अपारस सकल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नहीं रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पात्रया रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल साधंत संग हेत, करना सुने काऊ की निंदा, सब ते जाने अवस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बासना मन ते डरे, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत होवे निःकर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्रचै मन धन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सकल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला धर मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे ते सब भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे बिसन प्रीत हर के चरण हृदय वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सारस पीवे उस पंडित कह उपदेश जुग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सूखम मैं जाने अस्थूल जो वर्णा को दी उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सब को ज्ञान जो वर्णा मैं जपे को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुई साध संग पावे जन कोई कर कृपांतर उतारे पशु प्रेत मुग्ध पात्र को तारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत गिने न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दंसन पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान आपने दास को आप कृपा करी तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सुख कहावे तैसा हरख तैसा सो सदानंद नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमर तैसी बिक खाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरख कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाउ जित जित कर राखे तैसा तिस नाउ आपे कारण करावन जुग प्रभ भावै सोई फन होग पसर आप हो यान तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल सलोक औस्तत करे अनेक जन अंत न पार वार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पर तीर्थवासी कई कोट बन परमदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचार है कई कोट नापतन नाम ध्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पय अवमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कोहरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया शर्म माहे कई कोट पर देश परमाहे जित लाभ तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पांकी सर्प पाई कई कोट पाथर निरप बिरख निपजाई कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शशि अर नक्षत्र कई कोट देव दान विंदर सिख छत्र सागर समागरी अपने सुधारे नानक जिस भावै जिस भावै तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस्ताम साकति कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट किए रतन सुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवै कई कोट गिरी भेद स्वर्ण जीवै कई कोट जखर किशन मिस्ताच कई कोट भूत पीत सुगर मृगाच सब ते नेरा सब ते दूर ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੋ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮੇ ਪਾਰ ਬਨਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਂਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪਸ ਬਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰੀ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਨੇ ਬਪਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਤ, ਤਾਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨਕ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੀਤੀ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਅਮਰ ਪਏ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੇ, ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇ ਕਹੇ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਜਲ ਤਲ ਮਈਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜੋ ਤੁਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਕਿਨਮੇ ਤਾਪ ਤਪ ਨਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਆਦਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਮੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਕਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਥੀ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੇ, ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲਾ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ, ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਾਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦਿਸਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਸਤਕਾਲ ਤੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸੀਸ਼, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਨ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਬੜਾਈ, ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਵਨ ਸਭ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਪਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤੁਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਫੰਦੀਓ, ਕਬੂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਵਸੇ, ਕਬੂ ਸੋਕ ਹਰਖ ਸੰਗਾਸੇ, ਕਬੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬੂ ਊ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਬੂ ਬਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਪਾਤ, ਕਬੂ ਸੋਈ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਬੂ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਬਹੇ ਵਡ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬੂ ਆਪ ਕਰਤ ਮੈਂ ਆਵੇ, ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੇ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਬੂ ਮੋਨ ਤਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨੇਕ ਚੋਨ ਭਰਮੇ ਪਰਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੇ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਬਿਨਾ ਕੋਏ, ਕਬੂ ਸਾਹ ਸੰਗੇ ਭਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋ ਨ ਆਵੇ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਵਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਇੱਕ ਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, मिट के गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सत कुरबान सलोक सुखी वसै मसकीनिया आप नवार तले वडे वडे अहंकारिया नानक गर्व गले अस्तपति जिसका अंतर राज बमान सो नरक पाती होवत सवान जो जाने मैं जोवन वंत सो होवत बिस्ता का जंत आप को कर्मंत कहावे जन्म रे वो जोन परमावे तान भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे तरवंता हुए कर गर्वे तिन समान कत संग न जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसुमंत किसे न वधे आप अहंकारी धर्म राय तस करे कुवारी गौर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे सनम पावे सगले विरथारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नी दरवाई हर दरगह को कैसे गवै आप को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जागा मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तैरे को वेरी मीत तब लग नेचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद दान कहो छूटे सहस खटे लखट धावे तृप्त नावे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या कि करे नह तपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजाए सुपन मनोरथ व्यक्ति सब का जाए नाम रंग सर्व सुख होए वट भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करा

सदा सदा दिन रहनी सावते ऊच निर्मले करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एक होए सच करनी सचता की रहत साच हृदय सच मुकहत साची दे साचा कार सच वर्ते साचा बसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन साध समाता सलोक रूप न रेख न रंग तय गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी आवनासी ब्रह्मन में राख मानु की विद्याग तिस्ते परे नाई कुछ को होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गैर गंभीर गिर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा न ध्यान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक के मन हे अर नाओ मनसा पून सना जोग जो कर बाया सोई होग हरन बन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर नंद रूप मंदिर सब जाकै सर्व थोक सुनिया करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तविसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भक्ति सुख पाया नानक जिस पुरखा किन अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम ते आवे से तेह गुण में जाको परवाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख कर एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ नमसी एक ओंकार नाना जित करे खिन माहे पूर अपूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके साब तिसके ठाओ जब जब जीपे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमत वेद पुराण नाम के तारे सुनंद ज्ञान ध्यान नाम के तारे अकाश पताल नाम के तारे सगला कार नाम के तारे पुरिय सुपवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लय नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख मन सब मैं समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत ते जन जाकर हृदय प्रवेश सत नृत जे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी शिष्य करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित ना जाने की या नानक जो सुभाव है सोई वर्तिया विषम विषम पाए विषमाद जिन बुझा आया स्वाद प्राव कह रंग राज जन रहे गुर कह वचन पदार्थ रहे ओदाते दो काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सुबट भागी जान के सेव एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नान का फल पावे सलोक आ सच गा सच है पी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस संता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन्मानिया कर्ण कराव दिन मूल पछानिया जाके हृदय विश्वास परवाया तत ज्ञान तस मन प्रगटाया भय ते नरप होए बसाना जिस उपज तस्मय समाना वास्त मैं ले वस्त गडाई ताको पिन न कहना जाई बुझे बुझनार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक है मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर के ठाकर को सेवक जानै संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख है निरंकारा सो सेवक जस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपा

0: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਕਲਮੈ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਟਤ ਆਪ ਤਾ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬੋ ਭਾਤ ਤਿਸਤੇ ਕਰਤ ਵਿਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਵਨਾ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਬ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲਖ ਬਡਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅਮਰਤੇ ਮੰਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕੁਛ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਤਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤਿਪਤਾਨੇ ਮਾਨਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਊਟਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉਰਿਆ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੋ ਆਠ ਪੈ ਪ੍ਰਭ ਹਜੂਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਓਟ ਲਏ ਮਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕਾ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕਹਿ ਦਸ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ ਅਬਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸਤਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪਤ ਪਾਲ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਧਰਮਤ ਮਲ ਹੇਰਾਈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਦੇ ਹਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਟ ਭਾਗੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀਆ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੇ ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰ ਕਛੁਨਾ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਆਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਤ ਨਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਬੀਸ ਬਿਸੂਏ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਓ ਅਨਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਸਰਬਦਾਨ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਬੈਰ ਪਾਰ ਬਰੰਗ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਸਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪਨੀਤ ਪਰਚਨ ਜਨ ਗਤ ਨਿਰਮਰ ਰੀਤ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਰਵੈ ਗਵੈ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸਤੋਕ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅਮਰਤ ਦਿਸਤ ਪਿਆਖਾ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਵਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਵ ਨਿਰਵਾਨੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵਾਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖਾ ਕਦ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕੋ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾਸੇ ਤਪਤ ਮੈਂ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਭਾਉ ਚੁੱਕਾ ਪੋਹੇ ਵਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸਕਾ ਸਾਥਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸਵਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗਣ ਵੀ ਹੋਈ ਕਲਾਦਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਰਤ ਪ੍ਰਾਪ ਨਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਜਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕੇ ਤਨ ਸਾਰ ਅਸਤਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰਨਾ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਪਾਸ ਮੀਤ ਵਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਰ ਰਿਦਮਾਏ ਔਰ ਧਾਰੋ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ ਏ ਧਨ ਸੰਚੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੋਠਣ ਧਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੁਖੋ ਨਿਸਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਨੇਕ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਟੀ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਵਿੰਦ ਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਚੇ ਅਬਨਾਸੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਘਾਟੇ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੇ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਰੰਜਮ ਕਾ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਹਰ ਸਿਮਰਾਣ ਧਾਰਨ ਪਾਨ ਛੁੜਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ਤ ਮਨ ਬਾਂਸ਼ ਨਾਨ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਸਥਿਰੇ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮੰਦਾ ਸੋ ਤਾ ਮੀਤ ਕਟੰ ਬਰਵੰਤਾ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸੰਧਾ ਥਾਰ ਆਰਾਮ ਮਾਇਆ ਬਿਸਤਾਰ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕੰਮ ਛਿੜਕਾਰ ਹਸ ਸਤੀ ਰਸ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡਾਮ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਐ ਤਿਸ ਬੁਝੈ ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਨਾਮ ਬਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਬੋਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮਹੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚੰਨ ਗਮ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ ਜਨ ਜਨ ਕੇ ਕਿਲਵੇ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁੰਦ ਗੈ ਰਹਿ ਗਤ ਪਾਵੋ ਸਾਰ ਬੂਸਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿਸ ਬਾਏ ਨਾਨ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿੰਸ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਬੇਫੈਲ ਹੋ ਜਨ ਬਸ ਸੁਨ ਆ ਸਾਸ ਬਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸਾਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾ ਸੰਭਾਵੇ ਸਾਈ ਤਨ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਸੂਦਰ ਗਹਿ ਜਾਕਾਰ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਉ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਾ ਪੇ ਕੋ ਸਲਾਹੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰੇ ਕੋ ਮਨ ਮਾਏ ਇੱਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੋ ਅਨੰਤ ਮੰਦਨ ਜਾ ਪੇਕ ਭਵਨ ਤੇ ਕੋ ਏਕ ਅਗਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਰਿਹੋ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਓ ਪ੍ਰਭਿਆਪ ਆਨਕ ਵਿਸਤਾਰੇ ਤੇ ਪਏ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਾਦੀ ਜਾ ਜੇ ਜਾਂਜਾ ਚ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਤੂਰ ਪਾਰਮ ਮਿਰ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆ ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆ ਵੋ ਚੰਨ ਕਮ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨੇ ਨੀਤਾ ਏ ਕੋੜੇ ਗੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਵ ਕੀ ਦਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਸ ਭਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਨੈ ਸੋ ਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਉਪਜੇ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾ ਅੰਦਿਨ ਲਾਭ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਲ ਮੋਜਨ ਪਿਆ ਜਨ ਮਨ ਦੋ ਭਰਮ ਗਿਆ ਸ਼ਪੁਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਤਿਲੀਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਰੇ ਅਗਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੇ ਸੋ ਕੋ ਬਿਰੇ ਬਿਗਤੇ ਕੰਡ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਡ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤਦ ਇਹ ਬਜਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਨ ਜਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਸੋ ਪਾਵੋ ਆਪ ਜਪਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਪਦ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਪਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਕੁਲਿਆ ਸੂ ਨਿਰ ਨਾਮ ਬੁੜ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੋ ਕਾ ਹੋ ਅਨਾਸ ਨਾਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਓ ਮੰਤ ਅੰਤਰੇ ਸੁਭਾਓ ਨੇਤਰੋ ਪੇ ਦਰਸੋ ਗਏ ਮਨ ਬਿਕਸੇ ਸਾਧ ਚਰਨ ਤੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਧਰ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਏਕ ਪਤੀ ਜੇ ਕਰਮਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ताकि मां कही न जाए ना गिरिया सर्व संभाए प्रभक्षण दीन दयाल भगत वसदा कृपाल नानद गोविंद गोपाल सगुटा कर प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भजन के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पनीत भगत पाए लावे मन हीता हम निर्गुण यार नीचे अजान नानक तुमरी सनपुर भगवान सर्व पाए निम करके गुण गाए अनगराज पो बड़े आई अर के नाम कदा मन पाई बो भोजन का पर संगीर न जपती यार पली सो करनी हिर सो बातनवंत हृदय बस पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दे निवास सर्व सो नानक परगास सलोका निर्गुण सरगुण रंकार सुन समाधि आप आपन की आनान का आपे ही फिर जा पस्तपादी जाबे आकार के न दृष्टिता पापों तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब भैरव के संगमाद जब इसका मन चैन न जावत तब वर्षो को के ब्यावत जब अपना पार ब्रह्म तब मोह का क्रोध परम आपन खेला वृति जा नान करने आ न दूजा जब उत्तर केवल तनी तब बांध मुत को किसको गनी जब एक रगम पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रसाद सुबाए तब से सदका होकर ठाए जा पे आपे आप अपनी जोत रहे तब कब डर कम कर डर है आपन ज्यादा करने हार नान ठग रंगम पार बनासी सुखापन आसन तन को कहा बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगे तो गुज प्रभ एका तब चित्र गुप्त के पूह लेखा जब ना निरंजन गोचर गाद है तब कौन छुट्टे कौन बंधन बंद है अपना पाप ही चर जा नानक अपन पाप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरुष पुर पतोता तै बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन का निर्बान तै कौन को मान कौन बान जय स्वरूप जय केवल जगदीश तय शाल सिद्र लगद को की जय जो स्वरूपी जो संग समावे तै किसे पूग अंतरतावे कन ग्राउन करने हार नान करते का नहीं शमार जब अपनी सुबह अपन संग बनाई तक बामित सो पाए जय सब कला पे प्रभीन तै बेदेव कहाँ को चीन जब आपन आप उतारे तो सगन अपसंग कहाँ बेचारे जय आपने ऊच आपने आप नेरा तै कौन ठाकर ये चेरा बिसम बिस रह बिसमाद नानक अपनी का जानू आप जय अशाल शेर पे समाया उनके ब्यावत माया आपको आपे देते गुण का नाही परवे जय एक एक पवनता तै कौन चिंग लागे चिंता जय अपना पते आरा तै कौन कदे कौन सुने हारा बो ब्याह तू ते ऊंचा नानक आपको आपे पहुंचा जय ब्रजो परपंचकार ते गुण में किनो बस्तारे पाप पुन ते पई कहावत को नर को शुर मजावत आल जाल माया झंझाल हमें मोह परम पैपार दो सो मानव मान प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नान देख जय अवगत भगत आप जय पसरे प्रशासन परता दो पाका पेतन उनकी सुबह बने आप कवर करन जो जया पेरा पुनर जोग जिस पावे तिस अपन लावे जिस पावे तिस खेल खलावे बेशमार अथाय अगम तोले जो बलावो त्यों नानक दास बोले सलो जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दे सास पादी आप कदे आप कदे आप सुन यार आप एक जाते पास शिष्ट पाए अपने पाने ले समाए तू ते बिन नहीं कुछ होए अपन सुसा जगत पर होए जाग प्रभु जी आप बजाए साई नाम सोई जन पाए सो समदा सी तत का बेता नान सर सी का जेता जी जन सा ताके हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जे राके ते कोई न मारे सो मुआ जे मनो बसारे ते ताजवर काम को जाए सब श्रेख निरंजन राय जी की जो जाके सबा ते अंतर बार जानो साध गुण दान बेअंत पार नान दस दम बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहो बेआप प्रतपाले जी अनुभव पांत जो जो रचो स्थित जय पावे तिस लय मलाहे भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक के जानिया जान लागा रे के नाए ति ज्ञान बिरथे जाए सेवक सेवा बाना हुकम बूझ परम भत पाई इस ते ऊपर नहीं बेचार जाके मन बसे नंग
2: बैठे सोवत जागत यो मन तुझे चितारे सुख दुख इस मन की बिरता तुझे आगे सारे तू मेरी ओटबल बतन तुम ही तुम हो मेरे परवारे जो तुम करो सोई पल हमरे पिख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्राप्त हो सगले उदारन मोह मगन पतत चरनारन संग प्राणी ऐसे मने बसारन राओ संच बिखेले ग्राज कीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत्संतोख बिदारन इनते काट लियो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन नानक की बेनंती प्रप है साध संग रंग तारन बिलावल महला पंजवा संतन के सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूरी दिन से रात रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने नामे अपने की कीनी दात आठ पैर गुण गावत प्रभ की नाम को क्रोध स्तन ते जात तृप्ति गाये भीख प्रभ दर्शन अमृत हरस भोजन खात चरण सर नानक प्रभ तेरी कर कृपा सत्संग मिलात बिलावल महला पंजवा राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सुख संताप राओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन सनाया लाभ कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसैन्या तम तराव चरण गए सरन सुख दाते गुर कह बचन जपे हर जाप सागर तरे परम पै बिनसे कौ नानक ठाकर प्रताप बिलावल महला पंजवा ताप लाया गुर सिरजनहार सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार आओ कर मस्तक धार बालक रख लीनो प्रभ आत्म अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मिरवान गुर नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तय मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पै जो पेखो कह न जाय वडियाई मगन पै संग माते ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अबिद नहीं पूरा ऊचन ऊचा बीच नखीचा ओ तेरा तू मोरा एक ओंकार एक पसारा एक अपरे अपारा एक बिस्तर ईरन एक संपूर्ण एक प्राण अदारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंत सदा बेअंता को नानक ऊचो ऊचा बिलावल महला पंजवा बिन हर कामन आवत ही जहाँ से राच माच तुम लागे ओ मोनी महावत हे राहो कनक कामनी शेज सोनी छोड़कने मैं जावत हे उर्जर्यो इंद्री रस प्रेर्यो बिखोट खोरी खावत हे तिनको मंदर साज सवार्यो पावक तले सरावत हे ऐसे गढ़ में ऐन ठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मुठ पर ठंडे ठंडे केस काहे फिरावत है देशन आवे अंध ज्ञानी सोए रहे मत में आवत है जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी ज्यो फुहावत है को नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत है बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो जीत चितवो जस पान अतोली राओ सहज समावो गुरु बतावो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम खलागो जो बट पागो स्वाग हमारो कतु न डोली रूप न तूप न गंध न दीपा ओत पोतिया गंग संग मौली कौ नानक प्रेर भी सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साध दियारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ, पूरन पूर्यो संपूरन शीतल सांत दयाल दई, काम करो तृष्णा अहंकारा तांते हुए सगल खोई, सत्संतोख दया तरम सुच संतन ते इमत लई, को नानक जिन मनो पछान्या तिनको सगली सोज पई, बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बिचारे, बरना साको ए करमई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथिए के कथन न जाई, जय जय देखा तैरिया समाई राहो, जय जय महा भयान दुख जम सुनिए, तय मेरे प्रभ तुहे सुहाई, सरन परयो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक को बूझ बजाई, बलावल महला पंजवा कम रूप अबनासी करता, पतत पुतिक निमक जपाइए अचरज सुनियो प्रापत पै टोले, संत चरण चरण मन लाइए कित विधिये कित संयम पाइए, कौ सुरजन कित युक्ति त्याइए राहो, जो मनुख मनुखी सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाइए, नानक सरन सरन सुख सागर मोटेक तिरेक नाइए, बिलावल महला पंजवा संत चरण संतैल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी राओ, सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरि, ऐसो हर रस बर न साको गुरपुरे मेरी उल्ट तरी, भिख्यो मूण सब कै संगे उन्ना काओ सगल परी, पूरन पूर रिओ कृपा निध कौ नानक मेरी पूरी परी, बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हो क्या कहता, जान परवीन ठाकर प्रा मेरे तिस आगे क्या कहता रहो, अन बोले को तुहे पछाने जो जियन मैं होता, रे मन काहे कहाँ लो डाहिक जै पीखत ही संग सुनता, ऐसो जान पय मन अनत आन भी हो करता, कौ नानक गुर पय दियारा हरंग ना कबू लेता, बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परिये, ए निशानी सुनो तुम पाई जो कालर कालर भीत गिरिए राओ, जो देखे चितर तो निंदको माहे पलो देख देख भरिए, आठ पैर चितवे नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरिए, निंदक प्रभु पलाया काल नेरे आया हर जन स्यों बद उठरिए, नानक का राखा प्रभ आप स्वामी क्या मानस बपरे करिए, बलावल महला पंजवा ऐसे काहे भूल परे करे करावे मुकर पावे, पेकत सुनत सदा संग हरे राओ, काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संघे साजन त्याग परे, होवन कौरा होवन कौरा अनहोवन मीठा बिख्या मैं लपटाए रजरे, अंधकूब मैं परियो प्राणी परम गुबार मो बंद परे, कौ नानक प्रभ होत दियारा गुर भेटे काढे बाह फिरे, बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पये आनंदा मेरे अदेसा, सर्ब सुख मोको गुर चीना राओ, यानब ते सब पई सियानब प्रभ मेरा दान बीना, हाथ दे राखे अपने को कहू न करते कुछ कीना, बल जाओ दर्शन साधु कै जय प्रसाद हर नाम लीना, कौ नानक ठाकर परोसी कहू न मान्यो मन चीना रा, बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम रिदे मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई राओ, निवरे दूत दुष्ट बिराई गुर पूरे का जपिया जाप कहाँ करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही ताकि सन परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही, बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापे आगे दरगे पूरन काम रहो, आप त्याग परिये नित सरनी गुरते पाइये एहो निदान, जन्म मरण की कटिये फांसी साची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई पल मानो मनते छुटे सगल गुमान, कौ नानक ता की सरनाई जाका किया सगल जहान, बिलावल महला पंजवा मन तन अंतर प्रभ आई हर गुण गावत पर उपकार, नित्य सरसना का मूल कुछ ना ही राओ, कुल समुद्र एकन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, नंद से तीबिकिया बन गाही, चरण प्रभु के बहुत पाई, पव सागर पार पराही, संत सेवक भक्त हरता की, नानक मन लागा है ताई, बलावल महला पंजवा। तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुम्ही स्वामी अंतर जामी, तुही वसे साध के संगाराओ, खिन मैं थाप नवाजे ठाकर, नीच गिरते करे रजंगा, कबू न बिसरे ही ए मोरे, ते नानक दास ए दान मंगा, बलावल महला पंजवा। अचुत पूजा जोग गोपाल, मंतन अर्पर खू दयाल, कंठ लाए रखे अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल, दमोदर दयाल स्वामी सर्बस, संत जना तन माल, नानक जाचक दर्श प्रमांगे, संत जना की मिले रवाल, बलावल महला पंजवा। सिमरत नाम कोट जतन पाए, साथ संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास रहे राहो, जेते पुने चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गए, आवन जान परम पो नाठा, जन्म जन्म कह किलक दए, निरप होए पजो जगदीसे, एहो पदार्थ बट भाग लहे। कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे, बलावल महला पंजवा। सुली ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए मुआन पा कराओ, काठ कुठार खसम सिर काटिया, खिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पजिया, जिन रचिया तिन दीना साख, ताक पत्तर मी पुत्तर मीत तन किश नारे हो, छोड़ गया सब पाई साख, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जन जन का कीनो पूरन वाक। बलावल महला पंजवा। पूरे गुर की पूरी सेव, आपे अपवर्ती स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव राओ, आद मद प्रभ अंत स्वामी, अपना थाट बनायो आप, अपने सेव की आपे राखे, प्रभ मेरे को वड प्रताप, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने सगले जंत, चरण कमल नानक सरनाई, राम नाम जब निर्मल मंत, बिलावल महला पंजवा। ताप पापते राखी आप, शीतल पैगुर चरनी लागे, राम नाम हिरदे में जाप राओ, कर कृपा हस्त प्रभ दीनो, जगते उदार नवखंड प्रताप, दुख बिनसे सुख नंद परवेसा, तृष्ण बुझी मन तन सत्राप, अनाथ को ना शरण समरथा, सगल शिष्ट को माई बाप, भगत विशल पै पंजन स्वामी, गुण गावत नानक आलाप, बलावल महला पंजवा। जिसते उपजा तिसे पिछान, पार ब्रह्म परमेसर ते आया, कुशल खेम होए कल्याण राओ, गुर पूरा भेट्यो बड़पागी, अंतर जामी सुगड़ सजान, हाथ दे राखे करे अपने, पर समरथ न मान्या को मान, परम पै अंतर जामी सुगड़ सजान, परम पै बिंस गए खिन पीतर, अंधकार प्रगटे चनान, सा सा सराधे नानक, सदा सदा जाइए कुरबान। बलावल महला पंजवा। दोवें थाव रखे गुरु सूरे, हलत पलत पार ब्रह्म सवारे, कार्ज होए सगले पूरे राओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मजन होव साधु तूरे, आमन जान रहे तित पाई, जन्म मरण के मिटे बसूरे, परम पै तरे छुटे ते जम कै, कट कट ए करे आपर पूरे, नानक सरन परे ओ दुख पंजन, अंतर बहर पेख जूरे। बलावल महला पंजवा। दर्शन दोखत दोख नसे, कबू न होवो दृष्टि अगोचर, जी के संग बसे राओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूरे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, सास सा प्रभ तुझे चितारी, कृपा नित प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतिपाला, आठ पैत्र नाम जन जापी, नानक प्रीत लई प्रभ आपी। बलावल महला पंजवा। तन तन जो बन चलत गया, राम नाम का भजन नकीनो, करत विकार निस्पूर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता खस खीन खया मेरी मेरी कर कर मठुआ पाप करत ने परी दया महा विकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पिया शरण परे नानक स्वामी की बाह पकड़ प्रभ काड लिया बलावल महला पंजमा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे पाई मीत राओ गई ब्याद उपास सबनासी अंगीकार क्यों करतार शांत सुखर नंद कनेरे प्रीतम नाम देव हार जियो पिंड रास प्रभ तेरी तू समरस स्वामी मेरा दास अपने को रखन हारा नानक दास दा है चेरा बिलावल महला पंजवा गोविंद सिमर हुआ कल्याण मिट्टी उपाद पया सुख साचा अंतर जामी सिमर अजा रहाओ जिसके जीतन की सुखाले भगत जना को साचा तान दास अपने की आपे राखी पै पंजन ऊपर करते मान पही मितराई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काडे शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवे हर गुण बखान बिलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ पय कृपाल कारज सगल सवारे सतगुर जप जप साधु पय निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दोखी सगले पय रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उदर लगे लय अपने पाल सही सलामत मिल कर आए निंदक के मुख होए काल कौन रानक मेरा सतगुर पूरा गुर प्रसाद प्रभ पय निहाल बिलावल महला पंजवा मूला लनस्यो प्रीत बनी राओ तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिचतनी दिन सरैन मन माए बस्त है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है वो करो कृपा ठाकर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जाप जाऊ कुरबान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताके हृदय तरमन ध्यान रहाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जा का किया सगल जहान रसना रवो एक नरैन साची दरगे पावे मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ह पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिए सतगुर की सरन जय जयकार हो आ जगे अंतर प्रा अर ब्रह्मिर तारन तरन राव बसंबर पूरन सुखदाता सगल समगरी पोखन परन थान तनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरन जी जोत बस मेरे स्वामी सर्व से तुम कारण करन आद जगात प्र रखदा आया हर सिमरत नानक डई डरन राग बिलावल महला पंजवा दो पदी कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ किस सब किस मेरा एके निर्गुण उगे सरगुण केल कर्तव्य स्वामी मेरा राओ नगर में आप बाहर फोने अपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे राया कह कह ठाकर कह कह चेरा का को द्रो का बल बंचा जय जय पेखो तै तै नेरा साध मूर्त गुर पेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बिलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन टाकन टाक गोबिंद गुर मेरे मोह अपराधी सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जानो पेखो ठोर नाहि कुछ ठीठ मुकरन बड प्रताप सुन्यो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरे नाम रहन हमरो सुभाओ सदा सद पूलन तुमरो बिरद पत त्यू धरन करना मैं कृपाल कृपा निध जीवन पद नानक हर दर्शन बिलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संत चरण हमारो माता नैन दर्शन तूर परो राओ गुर कह शब्द मेरे हीरे बासे हर नामा मन संग तरो तस्कर पंच नवारो ठाकर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोए पल माने पावन दुपता दूर टरो नानक के प्रभ तुम ही दाते सतसंग लै मोए तरो बिलावल महला पंजवा ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा तुमरे तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुमरे तुम्हारे अंगा रहो, जन की टहल सुभाखन जन सो, उठन बैठन तुमरो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहो, जन की टहल सुभाखन जन सो, उठन बैठन जन के संगा, जन चर रच मुख माथे लागी, आसा पूरन अंतरंगा, जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर क्यों मजन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा, बलावल महला पंजवा जो पावे त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, हम बारक तो पिता कृपाल राहो, मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पोच न साखो तुमरी काल, तुमरी गत में तुम ही जानो, जियो फिर सब तुमरो माल, अंतर जामी पुरख स्वामी, अनबोलते जानू हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जो नदर निहाल, बलावल महला पंजवा, राख सदा प्रभ अपने साथ, तुम हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बन जीवन सगले अकात, राव रंग ते राव करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जलत अगन मैं जन द्वारे, करे अपने दे राखे हाथ, शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरत सगल सरम सगले लात, निध निदान नानक हर सेवा, अवरत सियानव सगले आकार, बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कब न बसारो, और लागो स्वामी प्रभ मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद बिचारो राहो, पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दोख हृदय मद तारो, जीवन प्राण हर तन तुम ही पौमे, पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर स्वामी सुख सारो, बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल पया, गुर पूरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी मया रहो, मन तन रवरे हर प्रीतम, दुख दर्द सगल मिट गया, शांत सहज नंद गुण गाए, दूत दुस हो खया, गुण अवगन प्रभ कछु न बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लिया, अतुल बढ़ाई चत्य बनासी, नानक उचरे हर की जया, बलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करन ग्रह पत उदारन, रख समामी अपने भरोसे राओ, सिमरन नहीं आवत फिरत मदमात, बिख्या रात समान जैसे, औद बहावत अदग महावत, पाप कमावत बूढ़े ऐसे, शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रवन जैसे, केशव कलेस नस अखंडन, नानक जीवत दर्श दिसे, राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कारनामा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे मेल लए, जब तै शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहो, तब मानर चित बरानी, साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तन ते रोग गए, मां मुगदिया जान ज्ञानी, राखे तार दए, कौ नानक गुर पूरा भेट्यो, आमन जान रहे, बिलावल महला पंजवा, जीवो नाम सुनी, जो पर सो प्रसन्न पै गुरपुरे, ता मेरी आस पुनी राओ, पीर गई बादी मन तीरा, मोयो नंद तुनी, उपजो चाओ मिलन प्रप्रीतम, रह न जाए खिनी, अनेक भगत अनेक जनतारी, सिमरे अनेक मुनि, अंदले एक निर्धन तन पायो, प्रभ नानक अनेक गुणी, राग बिलावल महला पंजवा, कर तेरा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मोहन नींद ना आवे हावे, हर कजर बसर पर कीने, ओडीनी ओडीनी ओडीनी, कब कर आवे री राहो, सरन सुहागन चरण सीस्तर, लालन

पावो, ताबरस मंगल गुण गावो, आनंद रूप तिहावो, नानक द्वारी आया तौ मैं लालन पायो री, मोहन रूप दिखावे अब मो नींद सुहावे, सब मेरी तिखा बजानी अब मैं सहज समानी, मीठी प्रे कहानी मोहन लालन पायो री। रहाओ दूजा बिलावल महला पंजवा, मोरी ऐ जाए दर्शन पावत हे, राचे नाती साही संतना अब चरण गए राओ, आहो मन अवर न पावे चरनावे चरनावे उलझियो, अलमक रंध कमल ज्यो अनरस नहीं चाहे, एके हरे लाए अंते टूटिए रिखते छूटिए, मन हरस कुटिए संग साधु उल्टिए,

काहे के चढ़ावो, मैं नाही कुछ हो नहीं, नहीं कुछ आ ना मोरा। अवसर लजा राख लो सदना जन तोरा, एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भव निर्भय अकाल मूर्त जुनी साहब गुर प्रसाद। राग गौण चौपते महला चौथा घर पहला, जे मन चित आस रखे हर उपर ता मन चिंदय, अनेक नेक फल पाई हर जाने सब कुछ जो जिय वरते, सब घालिया किसे का एक तिल ना गवाई। हर तिसकी आस कीजे मन मेरे, जो जो सब हमें स्वामी रहा समाई, मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अबर काहू की कीजे सा, निपल आस सब व्यर्थी जाई रहा। जो दिसे माया मोह कुटुंब सब मत की आस लग जन्म गवाई, इनका कछ हाथ नहीं कहा करया, एह वपड़े इनका वाया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छुड़ाई। जे कुछ आस अवर कर समय त्री, मत तू जाने तेरे कितने कम आई। ए आस परमिति भाव दूजा, खिन में झूठ बिंस सब जाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा घालिया सब थाए पाई। आसा मनसा आसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किछ किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुर बूझ बजाई। जन नानक की आस तू जाने हर दर्शन, देख हर दर्शन तिपताई। गौण महला चौथा, ऐसा हर सेविये नत त्याये, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा। जे हर त्याग अवर की आस कीजे ता, हर निवल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी, जिस सेविया सब दुख सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर कीजे परवासा, जह जाइए दह नाल मेरा स्वामी। हर अपनी पैज रखे जन दासा रहो, जे अपनी बिरथा करो अबरा पहना। आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी। बह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रव छोड़ अपनी बिरथा। अबरा पह कहिए अबरा पह कह मन लाज मरसा। जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई, जिससे मन मेरे ते सब अपने स्वाद मिलासा। जित दिन उनका सुहा होए न आवे, तित दिन नेड़े को न टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उप करे दुख सुखासा। तिसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश लै जापो, तिन अंत चढ़ाई तिन हर प्रीत चितासा। जन नानक आनंद नाम जपो हर संतो, ए छूटन का साचा। परवासा गौण महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सख्त सूर बो जलता, गुरु सस देखे लै जाए सब तपना। मेरे मन आनंदन त्याई हर नाम जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना, रहाओ जा मैं सब निधान है। सो हर जब मेरे मन मेरे गुरमुख खोज लो, एह रतना। जिन हर ध्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पीवो, उदम संत भयो वड वडना। तिस जन की वडियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे दी कटाई। एक तिल तिल तिल ना, तिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्यावे नित कर जरना। जन नानक हरदान एक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गौण महला जोता, जितने सा पासा अपना सकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान। हर बनासी सदा तिरने चल, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हर भजी सदा दीवान, जो हर मैल पावे गुरबचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसे दा तान। राव जितने तलवंत कलवंत मिखरवंत, दिसे मन मेरे सब बिंस जाए, त्यों रंग को संभ कुचान। हर सत निरंजन सदा से।

का ऐसे गुरु संगतियां ने नाम हमारे जिया की रास, नामो संगी जातगत जात, नामो ही मन लगा मीठा, जल तल मैं नामो डीठा, नामे दरगाह मुकुचले, नामे सगले कुल उतरे, नाम हमारे काज सीध, नाम संगे मन मीध, नामे ही हम निरपो भय, नामे आवन जावन रहे, गुरपुरे मेले गुरदास, को नानक सुसै निवास, गौणमाला पंजवा निमाने को जो दे तू मान, सगला भूखे को करता दान, गर्भ कोर में दखन हार, तिस ठाकर को सदा नमस्कार, ऐसे प्रबन माए ते आए, काट अब काट जत कथे सहाय राहु।

ना गौर की चान रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही और, गुर बोहत तारे भव पार, गुर सेवा जमती छुटकारी, अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइए बड़ भागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मेटे कोई, गुर नानक नानक हर सोए, गौण महला पंजवा।

ना इस उष्ण ना इस शीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरक नहीं इस सोग सब कुछ इसका ये करने जोग ना इस बाप नहीं इस माया ए परपंच होता आया पाप पुन का इसलिए बना लगे कट कट अंतर शरीर जागे तीन गुणा एक सत्व भया महा माया था की छाया असल अछेद भेद दयाल दीन दयाल सदा कृपाल ता की गतमत कछु न हुई नानक ता कै बल बल जाई गौण मोहला पंजवा संतन के बनहारे जाओ संतन कै संग राम गुण गाओ संत प्रसाद किल विक सब गए संत चरण वटभागी पए राम जपत कुछ बिघन व्यापे गुर प्रसाद अपना प्रभ जापे रहाओ पार ब्रह्म जब हुए दयाल साधु जन की करे रवाल काम क्रोध इस तन ते जाए राम रतन वसे मन आए सबल जनता का बरवान पार ब्रह्म निकट कर जान भाई भगत प्रभ कीर्तन लागे जन जन का सोया जागे चरण कंवर जन का आधार गुण गोविंद राम सत्य व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गौण अश्वनिया मोहला पंजवा घर जो जय कुंकार सतगुर प्रसाद कर नमस्कार पूरे कर देव सफल मूर्त सफल जाकी सेव अंतर जामी प्रकप दाता आठ पैर नाम रंग राता गुर गोविंद गुरु गोपाल आपने दास को रखना आ रहा हूं पात सा अमराव पति आए दो चंकारी मार बचाए निंदक कह मुक्ति नो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कह मन मा आनंद संत जपो गुरु देव भगवंत संगत के मुख

करना नंदक मार भयस अवतरना। जानकी निंदा करे न कोई, जे को जो करे सो दुगिया हुई। आठ बैर जन एक दिहाए, जनुआ के निकट न आए। जान नर वैर निंदक अहंकारी, जान पल माने निंदक बेकारी। गौर का सिख सत गुरु दिखाए त्याया, जान उभरे निंदक न कपाया। सुन साजन मेरे बीत प्यारे, सत वचन वरते हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। ने धरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कहो नानक तिस गुण बनिहारी, जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गौण बाणी भगता की कबीर जी। पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत मिले कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही है। राहु संतन स्यो बोले पुकारी, मूर्ख स्यो बोले चक मारी। बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। कहो कबीर चूचा कट बोले, भरिया होया से कबू ना डोले। गौड़ नरु मरे नर कामना आवे, पशु मरे दस का सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे रहाऊ। हाड़ ले हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूण मैं लागे। गौड़ आकाश गगन पताल गगन है, चौं दिस गगन निहाले। आनंद मूल सदा बरकोतम, काट बिन से गगन न जाले। मोहे विराग पय होए जियो, आए कहाँ गयो रे। पांच तत् मिल काया किन्नी, तत् कहाँ ले कीन रे। कर्म मद तुम कहत हो कर्म, किन जो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्वन अंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़, सहज होए सो होए रो। राग गौण बाणी कबीर जी की, कर दू जय कर सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो, हास्ती क्रोप मूण में मारियो। हास्ती भाग के जीसा मारे, या मूर्त कह हो बलिहारे। आए मेरे ठाकर तुमरा जोर, काजी बकबो हास्ती तोर। राहो रे महामत तुझ डाबो काट, इसे तरह

नाम रहाऊ। जैसे गाय का बाछा छुटका, थन चोकता माखन कुट लाओ। नाम दियो ना रहन पाया, गुर भेट दलक लगाया। जैसे बिखे हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मरारी। जैसे ताप ते निर्मल गामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। राग गौण बाणी नाम दियो जी की, कर दो जैकुं कर सतगुर प्रसाद। हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम लै उत्तम शर्मा। हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंदले की ला करे। हरे नमस्ते हरे नमय, हर हर करत नहीं दुख जमय। रहाओ हर नक्सा हर नक्सा, हर हर नाक्स हरे हरान प्राण। अजय मल कियो वैकुंठ दान, सुआ प्राप्त गण का तरी। सो हर नैनो की पुत्री, हर हर करत पुतना तरी। बाल घातनी कपट भरी, सिमरन द्रौपद सूद उदरी। गौतम सती सिला निस्तरी, केसी कंस।

थी। पांडे तुम रामा दियो तोले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कार खाना पाका वाका लड़का मारिया था।

जीवन साजे माई एक चलै हम देखो स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसी का बाप ना माई पनमत नानक जेतु देवै अंते हुए सिखाई राम कली महला पहला सर्व जोत तेरी बस रही जय जय देखा तै नर हरी ती जीवन तलब निवार स्वामी अंध कूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी जय पीतर कट पीतर बसिया बाहर काहे नाही तिनकी सार करे नितन साहिब सदा चिंत मन माही आप नेड़े आपे दूर आपे सर्वरिया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तेरे समाए अंतर सहसा बार माया नैनी लाग सबाणी भगवत नानक दासन दासा प्रतापेगा प्राणी राम गली महला पहला जित दर वसै।

लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नितो दे सेरा। गुर गोरख की दया बूझ ना पाई, फिर पर जोगी आवे जाई। जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रस हमारी गुर गोपाला। नामे किंता नामे मस्तर, नन नानक जोगी हुआ अस्तर। यों जपया नाथ दिन रह नारी, हुण पाया गुर गोसाई राह। दूजा राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई आनंद दिसे कोई। ठाकर मेरा सुगर सजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो हेरे रस मीठा, गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम, पीवत अमर पै नह काम। तन मन सीत लगन विहारी, अंध रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सद बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच नवाजिया।

के पाई, जा को गुर हर दिए सुखा, ता को बोर न लागे दुखा, आपे आप सर्वपत पाल, नानक रतो रंग कपाल, राम कली मल्ला पंजवा। मुक्ते पड़ता टीका साहित, हृदय राम नहीं पूर्ण रहत, उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे, अपना कहा आप कमावे। पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित, रहाओ आज्ञा राख्यो सालग राम, मन कीनो दै दिस विश्राम। तिलक चरावै पाई ता पाए, लोक पचारा अंध कमाए, खटकर्मा अर आसन धोती, भागट गृह पड़े नित पोथी। माला फेरे मंगे बपहूत, फेर वेद एह वेद कोई न तरियो मीत। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की उस उत्तरी माए, चतुर वेद पूर्ण अर नाए, नानक तिसकी सरनी पाए, राम कली माला पंजवा। कोट बिघन नाही आवे नेरे, नेर अनक माया ताके है चेर, अनक पाप ताके पानी हार, जाको माया पई करतार। जिस सहाई होए भगवान, अनक जतन उआ कै सरंजाम, रहो करता राखे कीता कौन, कीरी जीतो सगला पावन। बेअंत महिमा ताकी केतक बचन, बाल बाल जाइए ताके चरण। दिन ही किया जप तप ध्यान, अनेक प्रकार किया दिन दान, भक्त सोई कल मैं प्रवान, जाको ठाकर दिया मान। साध संग मिल पहे प्रगास, सहज सुख आन निवास, पूरे सतगुर दिया विश्वास, नानक होए दासन दास, राम कली माला पंजवा। दोष ना दीजे काहू लोग, जो कमावन सोई भोग, आपन कर्म आपे ही बंद।

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कछु ना कहे राव, बिन हर सगल निरर्थ काम। सोयना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहां उहां तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे। के नहीं ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपे जन कोए। ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार। संति संति जीता नाम अपार, हर संत करे सोई प्रवान। नानक दास कह कुरबान, राम कली माला पंजवा। सेंचे दर्ब देश दुख लोग, कार्ज तेरे काज न अबरा जोग। कर अहंकार होए वरते अंध, जम की जेबड़ी तू आगे बंद। छाड़ बनानी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े। माया के माते तै उठ चलना।

दर गए मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीर्थ परमेश्वर ब्याद न जावे ना बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद कवे नरहाई मनुआ डोले नर के पाई जंपुर बंदो लहे सजाई बिन नावे जियो जल बल जाई सिद्ध साध के ते मन देवा हट अंग्रह ना त्रपावे पेवा शब्द विचार गहे गुर सेवा मन तन निर्मल अपमान अपेवा कर्म ले पावे सचनाओ तुम शरणागत रहो स्वभाओ तुम ते उपजयो भगति पाओ जप जापो गुरमुख हर नाओ होमे गर्भ जाए मन पीने झूठ न पावस पखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं कर बार नान गुरमुख तत्व विचार रामकली महला पहला ज्यो आया त्यों जावे बौरे ज्यो जन्मे त्यों मरन पिया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे ना विसार पवजल पिया तन तन देखत गर्भ गया कन कामनी सुहित वधावे कि नाम विसारे भरम गया रहा जत सत संजम सीलन राखिया प्रेत पिंजर में काष्ट पेया पुन दान इसना न संजमा साध संगत बिन बाद जया लालच लागे नाम विसार्यो आवत जावत जन्म गया जा जम ताए केस गए मारे सुरत नहीं मुख काल गया आनच निंदा तात पुराई हृदय नाम न सर्व दया बिन गुर शब्द न गत पत पावे राम नाम बिन नरक गया खिन में वेश करे नटुआ जो मोह पाप में गलत गया इत उत माया देख पछारी मोह माया कै मगन पया करे बकार विसार कनेरे सुरत शब्द बिन परम पया होमे रोग महा दुख लागा गुरमत ले वो रोग गया सुख संपत को यावत देखे साक्त मन अभमान पया जिसका इह तन धन सो फिर लेवे अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ न चाले जो दिशे सब तिसे मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम रिज ले पार पया मुए को रोवे किस सुनावे पैसा गिर असरा लपया देह कुटाम माया ग्रह मंदर साक्त जाल पुराल पया जा आए ता तिने पठाए चाले तिने बुलाए लिया जो किस करना सो कर रहा बख्शन हारे बख्श लिया जिन एहो चाखिया राम रसायणा तिनकी संगत खोज पिया रिद सिद्ध बुद्ध गुर ज्ञान ते पाया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ सरन पिया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत पिया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लिया रामकली दखणी महला पहला जत सत संजम साच दड़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना अनस रहे एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रहे गगनपुर दृष्ट समसर आनंद शब्द रंगीना सत स्पंद कुपीन पर भूर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मैं सर्व सर्व मैं एका ये सतगुर देख दिखाई जिन की ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सुर पर लखन जाई दीपक ते दीपर गाछया तिरपन ज्योत दिखाई सच्चे तख सच मैल नहीं बैठे निरपो ताड़ी लाई मोह गया बरागी जोगी कटक किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई रामकली महला पहला अवहट हस्त मड़ी कर साया तरन गगन कल तारी गुरमह केती सब उधारी संतो रहाओ ममता मार हो में सोखे तिरपन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुर शब्द विचार।

प्यास जियो बिनवंत नान धार कृपा मेलो प्रभु गुणतास जियो सलोका जलन बुझी शीतल भय मन तन उपजी सात नानक प्रभु पूर्ण मिले द्वितीया भिन्सी प्रांत साध पठाए आप हर हम हमते नाही दूर नानक भरम पै मिट गए रमर राम भरपूर संत रुत शिष्यार शीतल हर प्रगटे मगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया ध्रो जियो सब काम पूरे मिले हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाव लख भेव्या भाव भगत गोबिंद वसत जामन साके जो जियो बिनवंत नान प्रभ आप मेली तह न प्रेम सो जियो सलोक हर तन पाया सुहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड़ा रि प्रीतम संग मने मन वाशत फल पाया हर नानक नाम भने संत निमकर रुत मन भावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाव मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन ते आए से सुंदर सोइया वन त्रिन त्रिपावन भय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इस पुनी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से ही तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलहार ने हर जप उतरे तीर संत चरण विराजत सब ऊपरे मिटया सगल कलेस जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया परवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मन ते बिसरे तज आप शरणि परे चरणी सर्व गुण जगदीशरे गोबिंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो रामकली महला पहला दखणी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार जिया जन चेता ओंकार सैल जुग भय ओंकार वेद निर्मित निर्मरे ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओनम अखर सुनो विचार ओनम अखर त्रिपन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सच्चे सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै मानक मोती समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा धंदे धर्म धरे धर्मा पुरा गुणकारी मन धीरा धंदे धूल पढ़े मुख मस्तका कंचन भये मनूरा धन धरनी तरे आप अजूनी तोल बोल स्वच्छ पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गैर गंभीर गवाया गुर सत कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत प्याया एको एक कहे सब कोई होमे गर्भ व्यापे अंतर बार एक बसाणे यों कर महल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर न जानो एको श्रिट सबाई एक ओंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों ग्रह राखो अफ्यो तुलिया न जाई माया के दवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लभ लो मुहताज गुते इब तब फिर पछताई एक शरेवे तांगत मित पावे आमन जान रहाई एक अचार रंग एक रूपा पौन पानी अग्नि असरूपा एको पवर भवे तहलोए एको बूझे सूझे पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आक्षण आए ऊर्म धूर्म ज्योत उजाला तीन पवन मह गौर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊनम बरसे निचर धारा उत्तम शब्द सवार नहारा

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया रहाव, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भाओ करिया, ऊडे ऊडा वैसै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा, सब त्यावै तो जी, हर सच